चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे करम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोक राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ हर जन केवट भाग वडेरे जन हर हर उशरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम न पाया ते बाघहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्त कलेशा लिखास तन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काही रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्र मैं जन तो पाई दांका रिजका गय कर धरया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो धरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काही मन पौ करिया उड़े उड़िया वैसै कोसा दस पाछै बजरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया राग आस्था महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सचे सिरजनहार सब जी तुमारे जी तू जी आका दातारा हर त्यावह संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अबर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवै है जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बलजासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु समर्थ शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परम पर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भाव है सोई वरता जी तू आपे करह सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई।

ले बचाई सुभैया। पाई गए जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। सरी असपान कृपा तुमरी कार्यो मैं ना कहो सब तोय बखाने ओ। बोहरा सगल द्वार को छाड़ गए गयो तुहार द्वार। बहां गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां।

हाथ लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते सब दे देह बुझाई बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीना

ये क्यों ना बाहा पसार के मिलती मैं साहेबजादे माता जी पार हो गए। माता ने फिर साहेबजादे ने पूछे अम्मा असी ते समझते सा वो जेड़े साडे नाल दे त्यार पर त्यार खालसे वो खड़े होणगे किधर चले गए हो। दादी से बोले वो सिपाही किधर गए। अब्बा बगा के लश्करे शाही किधर गए। हमें दरिया पे छोड़ के वो राही किधर गए। आए सूरते तड़फा के वो माही किधर गए। साहबजादे पूछ देने ते मां गुजरी जी जवाब देंदे ने शायद ही उडारी है ना प्यार नाल सुनना। दादी मां अपने पोतियां नूं कुछ इओं कहिंदी है।

तो होया ठीक सूर मालू पुछदे दाती की कर हो कितनी दूर मालू पुछदे दाती की कर हो।

0: सपना
1: सपना मनिया बंदे सपना पाप पर खेल रखा दे
0: मोरा बाली असी भटिया तो सिखिया मोरा बाली असी भटिया तो सिखिया सर निकलिया धर्म बचा
1: मरदा तेरिया
0: तेरिया
1: धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल
2: जालम सूबे की कचहरी विच गए ने जदों तकिया सूबे नू सामने उन्हां दे गाले फड़ पुठे ताके सूबे नू सामने उन्हां नू जोश आया उन्हां ने छड्डिया जकारा जकारा बनावे निहाल हो जा।

0: ना होए गुरमुख बूझा कोई हम मैं मार पछाणिया करनी कार कमावा शब्द समावा अंतर एको जानिया गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुबह हुई नानक कामण तिर रावे अपना रव रहे प्रभ सुई गुर की कार करे धन बालड़ी हर वर दे मिलाए राम हर कर अंग रती है कामण मिल प्रीतन सुख पाए राम मिल प्रीतन सुख पाए सच समाए सच वरता सब थाई सच्चा सीगार करे दिन राती कामण सच सुनाई हर सुखदाता शब्द पछाता कामण लया कंठ लाए नानक महले महल पछाण गुरमति हर पाए सातन बाली थुरमेली मेरा प्रभाव मिलाई राम गुरमति घट चानण हो प्रभ राव रहया सब थाई राम प्रभ राव रहया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभाणी सच सीगार बनाया कामण निर्मल हम मल खोई गुरमत सच समाई नान त्याग मिलाई करता नाम नवा निध पाई कामण निर्मल हम मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करता नाम नवा निध पाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद

गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो

कर शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साथ संग जीओ बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा कि चार पदियां दे च है, चार चरणां दे च है, चार पैरियां दे च है। किसी एक केंद्रीय ख्याल नूं, किसी एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे च दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां दे च अगर रहाव ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा मेरे पातशाह ने जिक्र किया है। अर्थ करन तो पहले थोड़ा जिहा मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। युग बदल देने समय दे, युग बदल देने शरीर दे, युग बदल देने मन दे। युग की तब्दीली तीन थावां ते आउंदी है। मन की दुनिया च युग बदल देने, हर युग मानसिक अवस्था है। युग बदल देने तन की दुनिया दे, तन की अवस्था है युग। युग बदल देने समय दे, वक्त दे, और निर्धारित समय दे युग की तब्दीली हो जाती है, युग का पलटा हो जाता है। पहली गल है। दूसरी, युग सिर्फ मनुखां की दुनिया च बदल देने, पशु पक्षियों की दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां की दुनिया च बदल देने, कीड़े मकौड़ियां की दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां की दुनिया च बदल देने, सूरज तारियां की दुनिया च नहीं। सिर्फ युग की तब्दीली मनुखी जीवन विच असी देख सकते हैं, बाकी सब कुछ कायनात विच उही चलता रहता है। लखां करोड़ां साल पहले जिहड़ा सूरज सी अज भी होई है, लखां करोड़ां साल पहले जिहड़े तारे सन अज भी होई है, ये धरती भी होई है, ये सागर भी होई है। प्राचीन तो प्राचीन ग्रंथां विच भी गंगा का जिक्र है, जिहड़ी हजारां लखां साल पहले सी अज भी होई है। इसनों धन गुरु नानक देव जी महाराज रामकली राग विच इस तरह बयान भी करते हैं, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे, साधर तीसा पवन जोलारे, जुग जी खेले थां कैसे। ओही सूरज है, ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही धरती है, ओही वगदी होई पवन है। ना पवन बदली है, ना सूरज बदले है, ना चंद्रमा बदले है, ना ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे बदले ने, ना जमीन बदली है। फिर युग की तब्दीली किससे खड़ी है, किससे खड़ी है? युग की तब्दीली सिर्फ मनुख ते खड़ी है, बंदे ते खड़ी है। कोई पंछियों की दुनिया च भी युग नहीं बदलते। हजारां लखां साल पहले जिवें चिड़ियां रहिंदियां सन, अज भी उसे तरह रह रही है। हजारां लखां साल पहले भी शेर शिकार करके कच्चा मांस खांदा सी, अज भी उसे तरह। हजारां लखां साल पहले गऊ घास खांदी सी, अज भी घास खांदी। गरज के उन्हां दी आवाज विच, रहन सहन विच, तरजे जिंदगी विच कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली तीन थावां ते मंदे ने, और वो सिर्फ मनुख नाल संबंधित ने।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਇਤਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਤਯੁਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਪਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੋਈ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਤਯੁਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ

दर्शन केतस उतरी पुख, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। तो दी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहा। तुम दान पूजा परमेश्वर,

बोला निर्वाण, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, काई रे बकबाद लायो जिन

लेत ही पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई एकादशी व्रत रहे काहु तो तीर्थ जाई पनक नाम देव सुकृत मत है गुरुमत राम कह को न बैकुंठ गए तीन चंदे खेल आते रहाओ कुंभार के कर हांडी आते राजा के कर सांडी दो बामन के कर

चौथा हर जन राम नाम गुण गावे, जो कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटन करके पाप सब खोवे, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साहु तरास रतन हीरा, हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे, सो साहो सचावन जारा। बैराड़ी मैला चौथा, जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याग सुखदाता, जाता अंत न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रात है उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन, हर अंत छुड़ावन हारा। जहाँ से हृदय बसया मेरा हर हर, किस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा से पाये हर जप, नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर हर नाम हित त्याए, जो इच्छा तो ही फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर सो प्रीत लगाए, दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी, एक दिन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्वतल पूरा, किस कीमत कही

सतगुरु प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, पर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तिलंग महला पहला कर पहला

निर्वैर अकाल मूरत अजूनी चरण गुर प्रसाद। यक अर्ज गुप्तम तेस तो दर्दोष कुन कर तार हक

प्रीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत पीछिया पाए रहा। केसर कुसुम मृग में हरणा, सर्व शरीरी चरणा, चंदन पगता ज्योति नहीं सर्वे परमल करना। क्या पट पांडा कह ना कोए, ऐसा पगत वर्ण में होए, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर पीछिया पाए।

ते तन माया पाया प्यारे लीकड़ा लब रंगाए मेरा संत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए है कुर्बाने जाओ निर्वाणा है कुर्बाने जाओ है कुर्बाने जाओ सिना से लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा नाओ।

आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला त्यानड़िए मानड़ा काय करे आपने तर हर रंगो की ना माने सौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या चूंदे तैतिया दे सलाया नैनी पाव का कर सिगारो ता सुहागन जानिए लागी जासो तेरे प्यारो। त्यानी बाली क्या करे जा तन कंकना भावे करण पला तरे वो तेरे साथन महल न पावे। विन कर्मा किस पाये नाही जे वो तेरा तावे लब लोभ अंकार की माती माया मह समानी इन्हीं बाती सो पाये नाही सही काम आनी। जाय सो सुहागनी वाह है किन्नी बाती सो पाये जो कुछ करे सो पला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए। जहाँ कह प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चित लाइए सह कह सो कीजे तन मनु दीजे ऐसा करमन लाइए। तेज कह सुहागनी पहने इन्नी बाती सो पाइए आप गवाइए ता सो पाइए और कैसी चतुराई सह नजर कर देखे सो दिन लेखे कामन नो निज पाए। अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सब राई ऐसे रंग राती सहज की माती तैन सिपाए समानी सुंदर साए सु

पाप जंग ले काबू पाया जोड़ी मंगे दाने लाले परम परम दे छप खलोए पूर सिरे प्रधान वे लालो काटिया बामना की जल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पने कतेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती हो हिंदवानिया ए भी लेखे लाए वे लालो खून के तोले गाल में नान के रत का तंदू पाए वे लालो साहिब के गुण नानक जावे मासपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेख वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचड़ा म्याओ करे गुम सोला पाया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आवन अगत्र जान सतान में होर भी उठती मर्द का चेला सच की बाणी नानक आख है सच सुनाए सी सच।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहे साचा केले सब हरतनी साला है सच सब ऊपर हरतनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहा पौन पानी परती आकाश कर मंदर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बसावे दुर्मतिया जब आने बलवंत कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में बिन सह सब झूठ मेरे मन त्याए रामा रहाओ साबेला चित नावे जित आए संतक काल ग्रसे तिस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला

आए आसमान जिमी द्रफ्त आप पैदाइश खुदाए बंदे चसंगी दंग फनाए दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हैवान हराम कुत्तनी मुर्दार बखुराए दिल कब्ज तब जाता दरो दोजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिल खनाए जब अजराइल बतनी तब चेकारे विदाए हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास केस दरवेश बंदा तिलंग कर दूजा महला पंजवा तुझ दिन दूजा ना ही कोए तू करतार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्मदा पार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ है तू होनहार अगम आगाध ऊंच अपार जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही गुर प्रसाद नान गुण गाहे जो दिसै सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया किसको बलिहार किसके संग तरै संसार कौ नान

बोलें प्राणियां तुझरा पैदा सृजनहार, जिन पैदा इसको किया सोई दे आधार, जिन उपाय में

तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। तिलंग महला पंजवा करती जा करते

मोहब्बतें मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाओ। दीदने दीदार साहेब कछ नहीं इसका मोल पाक परवदगार को।

अरे पाई आप जाने करे आप जिनवारी है लाई रायसा प्यारे का रायसा जित सदा सुख होई रहाओ जिन रंग कंक नारावया सा पछोरे पानी हाथ पछोड़े सिर कोणे जब रहन विहानी अच्छो तावा ना मिले जब तू कहगी सारी ता फिर प्यारा रावी है जब आवे जीवारी कंक लिया सुहागनी मैं ते वदवी एहे से गुण मुझे न आवनी कह जी दोष करे हो जिन्नी सखी सौ रावया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लियोगी पंथ बताए हुकम पछाए नानका तौ चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो चारे तो पावे जो गुण मिलिया सो मिल रहा मिलिया कही है रे सोई जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई पाप मिले सुन पाप को लिव लिवे तो पावे गुर प्रसादी जानिए तो अन पो पावे पानावारी हो कर खर सार न जाने रसिया हो वे मुस्कता तब फूल पछाने अप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे सहजे सहजे मिल रहे हमरा पद पावे जिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया बलिहारी गुरु अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सिख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पाव दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन कुमकुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन विट्टो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी पुस्तक है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से तुरहड़ी जिना जी प्रभ नाले ओ जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया ओ आप छुटे परवार सो सब जग छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन प्राणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाया हर वर्गे पहनाया हर आप गल लाया जो गुरमुख नाम के आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे पान सुपारी खातियां मुख दीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम उदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने सतगुर बाता आती है तुस करे पसाओ है गुरु वित्तो सदवारिया जिन जितड़ा नाओ तो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोलगी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुखो सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित विद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वड दाने हो सतगुरु को सब

सुन सुन औद बिहात है फूटे कट जू पानी रहा। हर गुण काहे न गावे मूरख अज्ञाना।

आज में हो कहां गाफिल सोया, जो तने पुजिया संग ही सो भी संग न होया। रहा मात पिता सुख बंद जन, हित जासियों की ना जियो छूटियो, जब देहते दार अगन में दीना। जीवत लो जो हार है जग तो तुम जाना, नानक हर गुण गाए लै सब सुखन समान। हिलंग महला नाम हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर भी क्यों जात है कहो मान लै मेरो। रहा संपत रख तन राज्यों, अपने हो लगायो काल।

पाई नानक कहत पुकार कै बहु प्रभ सरनाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देव कतेब उत्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना सिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे। हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद, कर फकर दाएं।

तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। रहाओ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू।

मैं विचार क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरी। हल्ले यारा खुश खबरी, बल बल जाओ है ब

पांडा सोए बै सूप देवो तौदू बै को जावो दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो जतो ताए को नामा अवर निराकुल कामा रहाओ ए मन कीती हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मतिय इन बिद अमृत पावो मन संपटे जित अक्षर नावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रह कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई भगत हीन ना

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत छोद काहे दिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे तेरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे। सेवा करे सो चाकर होए, जल तल मैयल रा

पाछे का विचार आप वर पाए सी, मत को जाने जाए अग्गे पाए सी, जे कर्म कमाए केहा हो सी, अमृत हर का नाम आप वर पाए सी। चलिया पक्षियों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी, नानक आप निहाल सब कुल सार सी। सुही महला पहला, जोगी हो वह जोग वह पोगी हो वह खाए, पपिया हो वह तप करे तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदना सुनी जय पाई जे को बह अलाए रहाओ, जैसा बीज है सो लुने जो खट्टे सो खाए, अग्गे पुछ न हो गई जैसा निशान जाए, कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए, जो दम चित ना आवई सो दम बिरथा जाए, ए तन वेची बै करी जे को ले विकाए, नानक कम ना आवई जित तन नाही सच्चा नाम। सुही मैला पहला कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जोग ना संसा जोग ना डंडे, जोग ना पसंद चढ़ाई है, जोग ना मुंडी मूंड मुंडाए है, जोग ना संगी वाई है, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तिर पाई है, गली जोग ना होई एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहीं सोई रहा, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना तारी लाई है, जोग ना देश दिसंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत के पाई है, सतगुरु पेट है तास ऐसा टूट है, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत के पाई है, नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सिंगी वाजे तो निरपो पद पाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। सुही महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन सराज बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कहते हैं मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल

लहारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीच जात परदेसी, खिमरावे तिल जावे, ताकी संगत ना।

मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन प्रबोधिया हर किया रस गट के रहाओ सब संगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर पद के हर कृपा तार मेलो सत संगत हम तोवे पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाठी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम वेखियो सुर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुई महला चौथा हर हर नाम तजियो पुरुषोत्तम सब जिन से बाल दलगा सौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी हर अस्थिर से सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अतुरगा मैं मन तन अर परयो गुर आ गए सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ नरपत राजे रंग रस माने बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा कर्म राय सिर दंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर रात रात जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतिपलगा दर्शन संत देव सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी मोको की जय दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सद तुमगा सुही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीत है रंग गुर तुठे हर रंग चारिया फिर गौर न होवी पंग मेरे मन हर नाम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेशिया हर के प्यारा निसंग रहाओ मुंद के आनी मन मुखी फिर आमन जाना अंग हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल परे दो चारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत पर नवलाया सब लाथे किलवित पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मंतन रंग सुही महला चौथा हर हर करें नित कपट कमावे हिरदा शुद्ध न होई अंगिन कर्म करें वो तेरे सुखने सुख न होई ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई कोरे रंग कदे न चढ़े जो लोचे सब कोई रहाओ जप तप संजम वर्त करे पूजा मन मुख रोग न जाई अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुआई बाहर पेश बहुत चतुराई मनवा जय विस्तावे होमे व्याप्या सबद न चीने फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो बूजे सोजन नाम से आए गुर प्रसादी एको बूजे एक समाए समाए सुही महला चौथा कर दूजा इक ओंकार गुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज हो जाए हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर शांत बसाई कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर गुरु मिले सब दुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे।

और कृष्ण भी आप लोग को बुझाना चाहना है। जब छुटकी लगी कृष्ण दूधी बदल गई आ गई कृष्ण तू तू बुझाना चाहना पर तेन बुझाना आ नहीं रहा। हालांकि गुरु आवाज दे के आख रहा सी कहंदा ओ पढ़िया इस दुनिया की दौलत पदार्थ नाल कृष्ण नहीं बुझनी ज्यो ज्यो आएगा कृष्ण होर वधेगी। कह लगा जी किवें बुझे गुरु आखन लगे कृष्ण बुझे हर के नाम मां संतोख होवे गुरबचनी। कह लगे ए अग बुझनी सी ना बनावे अंदर सब जपदा रहे हो अग बसंत बन गई बाहर आके वसीला भुल गयो। कहन लगे हालांकि एक गल समझ कि जेड़ा प्रभु तेनू अंदर बचाने वाला है वो हुण तो कोई तेरे तो दूर नहीं हो गया। अगली लाइन का एक बड़ा डीप ख्याल है। कहन लगे जेड़ा प्रभु मात गर्भ में अपन सिमरन दे तहत तुम राखन हारे है जेड़ा तेनू मां तपत विच बचांदा है वो हुण तेरे तो दूर है हुण क्यों तड़प रहे हुणे कृष्ण क्यों नहीं बुझ रही। कहन लगे ओ कलिया

जहाँ कुछ पावत ना हो तेरे को पार गुरु प्रसाद ऐसी बोले कमानी चूक गई सरयावल जानी कह कबीर भज सार परिवार पार सब एको धानी

राम नाम सुमर को जी फिरना खाई महाकाल जनु परम परम परम आयो बड़ा भाग साध।

तो दुख हरो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जैनर जस कृपा निदगारो ताको पयो सुहाई।

मन होते नंदा उतरे मनो दुली मिलवे की मेहमान बन का तो मिलवे की मेहमान बन का तो नानक पर पहला साथ न चला बिन पर बिछिया सगली।

अब साधु संग परिया हर द्वारे करिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया।

कहे सुर नर मुंजन सेव। किते आखे आखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे, ते किते होर करे दाख न सक कई के। जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने सचा सोए। जे को आखे भूल बिगाड़, तां लिखी असर गवा रंग वार। सो दार केहा सो कर केहा, जित मैं सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक संखा, किते पावना हारे। केते राग परिसों कही अन, केते गावन हारी। गावे तो न कौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारी। गावे हैं चेत गोदरक जाने, लिख लिख धर्म विचारी। गावे ईश्वर वर्मा देवी, सोहन सदा सवारी। गावे इंद्र दासन बैठे, देवते आंदर नाले। गावे सद समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सति संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग बेदा नाले। गावे है मोहनी अमन मोहन, सुरगा मछ पायाले। गावन रत्न पाए तेरे, आठर तीर्थ नाले। गावे है जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल पर पंडित।

सदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लख हो है लख हो वै लख वेश, लख लख गिड़ा आखियां एक नाम जगदीश। इतरा पत पवड़ियां चढ़िया हो यकीश, सुन गला आकाश की गीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है गूड़ी गूड़ा ठीस, आखण जोर जो पैने जोर, जोर न मंगण देन न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मन सोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टे संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राति रुति स्थिति वार, पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग। दिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार। सचा आप सचा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवाण। नदरी करम पवै निशान, गच बगाई उथै पाए। नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म। ज्ञान खंड का कहो कर्म, गेते पवन पाणी वै संतर। गेते कान महेश, गेते बरमे काढ़त घड़िए रूप रंग के वेश।

ज्ञान के अंत अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड दिशा नाद विनोद गोड नंद शर्म खंड की वाणी रूप दिशा कार्त घड़ी बहुत अनूप ताकियां गल्लां कसियां ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथै घड़ी सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी सुरस दंग की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर दिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे दाके रूप न कतने जाए ना ओ मरहे न ठग जाए जिनके राम बसे मन माहे तिथै भगत वसै कहलो करहे आनंद सचै मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर वेख नजर निहाल तिथै खंड मंडल बरपंड जे को कथा तंत न अंत।

सदंगा गंगोकर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सद्दाता दयालं आशेदीयपेदीय नाम काम स्वादुराजी स्वादा सुधाम देराजोर्जा जरीशाम जले हैं सले हैं पीता वे हैं प्रभु अजुआ दे सब बेस है भुजंग प्रयाद शाम अगाध्य वाद्य आनंदी स्वरूप नमो सर्व मान्य समाज दीन दान नमाज दो नरनाथी नमाज दो परमाथी नमाज दो गंजे नमाज दो पंजे नमाज दूंगा काले नमाज दूंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रुख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व भीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमदानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व यंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे दर्पंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातंग प्रसिजे गर्भालंग स्वरूपे गुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग नवासी चरपट शंद दग प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत दव प्रसाद आद रूपन आदमूर्ति उन प्रखभार सर्वान्तर मान देवा बेवाद उदारु सर्वकालक सर्वकालको

पूजा कर रूप रे रूप रेखना राघु जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैलियो अनुराघु नाम काम विहीन बेगर दामू न जाई सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताही एक मूर्त अनेक दर्शन तीन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेल नयंत गोबर एक देव पेव न जानी जे बेद और देव रूप रंग न जात बासु जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन मरण विहीन जकर बकर बिर जदर जाकर मानी परतीन लोक जौदा के बिखय जग जापी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप्य सब जन थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व विश्व रचो सुयम भव गणन पंजन हारु कालहीन कल संयुक्त कल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूतल अख भेष अंग राग न रंग जाकर जात पात न नाम अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष पंजन मुक्त दायक काम आप रूप मी कानोस्त एक पुरख बतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत रंग ही न पंग अनात्मा एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व को व्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदे अनुपेख सर्वशास्त्र न जानी जे रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जा कहे नेत बागत नेत गोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार शंभ दव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निधन अनाश जन बाह शान राजन राजपान पान देवान देव उपमा महान इंद्रानिंद्र बालन बाल अनुभूत अंग पापंग आत्मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय काम आत दोत पर चांड मित गद अखंड अलिस्थ कर्म दृश्य धर्म सर्व प्रनाटे आन दंड बाटे चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारिय पारे हरियंग हरियंग नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर भरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर मान्या चतर चकर दान्या चाचरी छंद न सतरा न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग जाई न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषा भगवती शांत प्रसाद कथते क्या सिज देसा क्या पिज बेसा क्या गंज कर्म क्या पिंज परम क्या पिज लोक क्या दुद सुख क्या बदूत वर्ण क्या बपूत करना है कि राजंग प्रभाएंग धर्मंग तुजाएंग शोक वर्ण सर्वा वर्ण जगत कृतियां क्षत्रंग क्षत्रिय ब्रह्म स्वरूप ज्ञान पानु

अभयकृतकृत अमृतमृताय अमृतमृतकरुणकृतय कृतकृतधरणीधृतय अमृतेश्वराय परमेश्वराय कृतकृतमृतमृताय अजबाकृतः मृतमृताय नरनायकाय खलकायकाय विश्वम्भरः करुणालयाय नृपनायकाय स्वरूपायकाय पञ्जनहाय अरगञ्जनहाय रिपतापनहाय जपजापनहाय आकलङ्कृतः सर्वकृतः कर्तकरः अर्धारः परमात्मः सर्वात्मः आतुम्बासुः जस्केजासुः भुजङ्गप्रयातिशम्। नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारी नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो वाक भंगे भंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगीय कामे एक श्री शंभ। अजय अलय पैव पुवजुनाश गाश गंज पंज लख पख काल दयाल लेख भेख नाम काम गाटा नाथे प्रमाथे योनि मोनि नराग्य नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजय लेखे भुजंग प्रयात शांत समाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणाशे अगंजल नामे समाज तुल निवासे रंगामंग प्रभुते समाज तुल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग प्रभुते सदा सचदानंद सदरंग प्रणाशी ग्रीवन कनिंदा समाज तुल निवासी अजायब प्रभुते विजायब ग्रीमे हरियंग करियंग करीम रहीमे चतचकर वारती चतचकर भुगते सुयंग भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते

का आज संग रहे हैं, पूर्ण हो ये हमारी आशा, दौर भजन की रहें प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम दे पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, जन जन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरे हैं, मरण काल का त्रासन भरे हैं, हु जो सदा हमारे बचा, शरीर तो जो करे हो रक्षा। अच्छा।

अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघ करो दोषी दे उठ वो दुद पाता सकल मलेश करो रण खाता जी आस तुझ तब सरणी परे दिन के दोष दुख दवै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दिहाए है ताके गाल निकट नहीं आए है रक्षा वही ताए सब काला दुष्ट रहिष्ट टरें तत काला कृपा दृष्ट धन जाहे नहर हो ताके दाब धन कमो हरे हो रिद सद कर्म सब होई दुष्ट शास्व सके न कोई।

0: अकाल मूर्त अजूनी साहब अंकुर प्रसाद आज सामाला पहला पाठ लुपाना जो कि मले पहले अश्वराज जी
1: लोकमला पहला बलिहारी।

महिला दू जाए एक सच्चे की एक उल्टी सच्चे का जीवात एक रख समाल एक रख में कड़े विनाद एक न पाने कड़े एक न माया विचिवाद ए पी आख न जाती जा रात।

पालो अमंडला ठंडा प्रबंधा अन्न जे तुझा खाली जे तुझा सब जाने नानका तेरा मेरा जनता नान जन तू पाए के हा माले सपना जिन करती करना की चिंता भी कर दिंदा तू करता चिंता करे कि

0: देखो तो उगवे रुती हूँ रुत हो
1: लाल पक्की जेन पे कूड़े सोए को लपा दुरा मेहता।

अश्री दक्षिणी नील बस पैर प्रभास नेतल बुझे प्रास अब क्या करा तब क्या करना क्योंकि मुझे न जाना देखी चौक टीका ऊपर आए बैठे कुड़िया।

सिनेमा ही उधारी अनक पुने चरण करत नहीं करे हर को नाम को पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जप होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परे हर का नाम जप निस्तरे

अनक जहुन जन मैं मर जाऊं। नाम जपत पावे विश्राम, हौं मैला मलकब हुन धोवे। हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग। नानक पाई है साध कै संग,

हरे अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकत साध कुमात, हर जन कै हर नाम।

त्रिपित तुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन का भोग जोग हर नाम जपत कछ ना हि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर तन जन का आप प्रगदीना हर हर जन कै ओट

नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव है महा उदास पति सिर थीव है अगन माह होमत परान कनक अस्तव है वर भूम दान न्योली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजमे साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो पीहो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कच नाही नान

सुन नहीं लेता। निर्धन को धन तेरो नाओ, निछावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल कटा को देव दान। कर्ण कराव नहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आते, अपने संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तत तुमते हुए, नानक अवर ना जान सोए।

अंतर मलमाया, छप स्नाह कचकरह छुपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ समान। अंतर यगन बाहर तन स्वा, गल पात्र कैसे त्रय यथा। जाके अंतर बसै प्रव्याप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेह कोड़ निगहावे।

ते हस्ता मिथ्या तो मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर कर्तव्यमान अस्थिर भगत साधु की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ कौहिरे मिथ्या नेत्र पेक्ष पर त्रय रूपाद मिथ्या रचना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेख लेखारा बिन बूझे मिथ्या सब तहे सफल दे नान हर हर नाम ले बिरथी साकत की यार जा साथ बिना कह होगत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत तन कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद।

आठ पैर सिमरो सतना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ बटंबर हटावे किसे त्याग खपे वर लुभावे। जे प्रसाद सुख तेज सुई जय मन आठ पैर थांका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को माने मुक्ता को जतन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता तरन मन सदा से आए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दरगह मान पावे नानक पत्ते पी कर जावे।

हर हर जस कहत दे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ठाके जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन का साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे।

प्रसाद सुख जी बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद सुपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रचार अवर कत लागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तुम प्रगट संसार, तिस सब को मूल न मनो निसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता को जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच।

सार संग सब हुस्न मेरा, सार के संग पाए नाम रतन, सार के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा।

0: संग नानक प्रसो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापनीत
1: साध संग किस सुनी बैर साध के संग न बिगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा साध संग जने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग सजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कभ हूं तावे

मन साचा मुख साचा सोए अवर ना देखे एक बिन को नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। अच्छी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोक जैसे सूर सर्व कौसुक, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे।

साबत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुभला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बस है प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है,

ज्ञानी कह सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

संपत उधारे आप करे अपन विचारे दुहा श्रिया का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुष से क्या हुए आवे जो तुझ पावे सोई करावे किसका हाथ हुए ता सब पिछले जो तुझ पावे सोई करे अनजान से बिखिया मैं रचे जे जानते अपने आप बचे भर में फूला दे बिस्तावे निम्फ माह चार कुंत के आवे कर

अकाले खा नागने जगदी जियो पिंड सब किसकी रात कर पूर्ण ब्रह्म प्रदास अपनी बन आप बनाई नानक जी वह देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो किस पावे कोई कुंतियो कभू ऊंच नीच में बसे कभू थोग हर रंग हसे।

पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे मैं गिरता वै खप खप मरे बिना संतोख नहीं कोरा जय स्वप्न मनोरथ बिरथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़पागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप।

सरस्वती। संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक न पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन। संत के हते कौ रखै न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक।

संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसी का नहीं मित। संत के दुखी को दान लगे, संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी। संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते तरह। संत के दुखी को नहीं खाओ, नानक संत पावे प्राण ले मिलाए। संत का दुखी अद बीज ते।

हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। परी मानुख की टेक बिठी सब जान, देवन कौ एक है भगवान, जिस कह दिए रह अघाए, बहुर न तस न लागे आए, मारे रखे को आप।

आप अनक जुगत रच थापो थाप अबनासी नाही किछ खंड धारण धार रहे ब्रह्मंड अलाकय पहिव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ

तेजा सब किस किसका भी अदर वह अक्त सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता वह जे को हुए वह दार तिस दिन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को था मैं थमन क्यों गुर का शब्द मनाये समन ज्यो पाखान नाव चढ़त रहे प्राणी गुर चरण लगन निश्चय ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात चौतूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख का ही दिल लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है।

जन निर्मल किया, जाके मन गुर की प्रतीत, किस जने आवे हर प्रतीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय खुश होए, सच करनी सिद्धा की रहत, सच हृदय।

कृष्ण ने भोगी ध्याय ध्याय भगत सुख पाया नानक के पुरख का किनै अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहि सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोही अपने सूत सो मत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावै से गुण में जाको परमाई।

ताई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव है नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड

सुन सर्वन हर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माए समाणी। सत कर्म जाति रचना सत, मूल सत सत्य उत्पत्त। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सतनाम पद का सुखदायी, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत भजन साधु उपदेश।

ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक तीरा कै ननकारा। तो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक तो सेवक सास सास सुमारे। अपने जन का पर्दा ठाके, अपने सेवक की सर पर रखे।

प्रभु के सेवक पूछते यूचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक तो सेवक दैदित प्रगताया नीति कीरी में कल रख है पसंद करे लश्कर कोट लाख है जिसका साथ न काटते आप ताको रास्त देकर हाथ।

नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाई है। सफल दर्शन से परसत चरणगत निर्मल रीत केतल संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करने आगाने।

पाप सब गीत विसारो, चरण कमल हृदय नहीं उतारो, कर्म कारण स्तोत्र समर्थ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। एह तन संचो हो बहु भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंट उठावे, सो तन हर सेवा के पावे, जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करे पली करणी, सा शोभा पज हर की सरणी, अनको पावे रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए।

है संग, परेशरन आन सत्याग, अंतर प्रगास अनबिन निर्लाग। बड़ भागी जपिया प्रग सोए, नानक नाम रते सुखोए। जे व्यक्ति मनता पूरी सही, सतगुर के निर्मल मत लई।

स्थित हुई। जब अवगत अगोचर प्रवीण का तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपने आप ही ये चर्जा नानक आप नरू आप ही यो प्रजा। जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन महल कहो कैत होता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान।

मन इच्छे नानक फल पावो। फलत फलत दोयले सवार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी जिक्या, जिस मन बसे तिस साच प्रीतिया।

मिलाए। कवन निकट कवन कही है सूर, आपे आप भरपूर अंतर्गत जिसे आप जिनाए, नानक किस जने आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नयन आप देखनहारा।

जा कै मन लागा हर रंग, जय जय सब दयाना हदवा जय, सुन सुन अंध करे सब गा जय। भगते गोपाल महांत कै माते, नानक कुदरे तिन कै साथे, करन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रव्याप मिलाए।

सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो हो गुणगान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट कर लोए।

शहीद कर दिते जाते। इस वजह करके भाई इतना काफर विद्वान नहीं होना चाहिए। आज तक सारे अफसोस कर दे पर कोई जरूरत तो हिम्मत कर दे। अफसोस करना एक गल है पर उस तो जरूरत करके उन्हें शरण च देना एक होर गल है। तो अफसोस करने वाले आदमी उसी तरह के अपराधी हैं क्योंकि उसकी कोई उस तरह का जवाब नहीं दे सकते। अफसोस करने वाले उन्होंने नाल जुड़े हुए हैं भावे सिद्धे ना दिखते हैं लेकिन कोई ना कोई तरीका उन्होंने मन में भी दर्द बैठा हुआ है। इस वास्ते जिन्होंने औरंगजेब छेक दे दे जिन्होंने औरंगजेब डरा दे दे बाकी दे अफसोस तो करते नहीं पर शरण च नहीं रखते। ये कलगीधर पातशाह सन ये आनंदपुर से जिस आनंदपुर साहब के महसूस होंगे सन लोग जिन्होंने डराते सन। तो इतने शेख क्योंकि शेख का संबंध गुरु के शब्द न ही नहीं शेख गुरु में गुरु जानता ही नहीं वो तो उन्होंने प्रतिपदी से बिठाना चाहता है उबलती देश के बिठाना चाहता है वो तो उन्होंने शीस कलम करवाना चाहता है तो गुरु तो शब्द मान की लेना देना। तो फिर इसका अर्थ होया यह जोड़ा इतने शेख वचन है अक्षर है एक प्रतीक है। प्रतीक है जिसके हाथ सियासी ताकत भी है जिसके हाथ धार्मिक ताकत भी है। शेख काजी किसे सल्तनत उत्ते नहीं सन लेकिन सल्तनत के हाथ फोके सन। शेख काजी कोई राज गद्दी तो नहीं सी बैठे होंगे लेकिन राज गद्दी तो बैठने वाले उन्होंने वरते होंगे सन। तो जो वरतावा होंदा सी फिर उसकी विरोधता करना भी एक गुनाह होंदा सी। गरीब नवाज सचा पातशाह आज के इस श्लोक फरमान करते हैं शेखा अंदरों जोर छद तू यह जो तेरे हाथी ताकत जोर है ना ये तू छड़ दे इसका हंकार छड़ दे। इस जोर का हंकार छड़ के तू अपने अंदर एक डर बना तू भी किसी ने जवाब दे हैं दरवाजे तेरे को भी कोई कुछ ले आए लेगा जे ये नहीं छेगा तो सुन तेरे अंदर का झलपन पागलपन ये बरकरार रहेगा। सचा पातशाह कहने ने शेखा अंदरों जोर छद तू तो कर अपने अंदर डर बना मालक का डर बना परमात्मा ने तेरे को भी जवाब ले लेना है। सचा पातशाह कहने ने झल दवाए झल के अर्थन पागलपना यह जरा हंकार की ताकत के जोर का पागलपन है ना झलापन है ये तू गवा दे ये तू खत्म कर दे। गरीब नवाज सचा पातशाह कहने ने गुर कह भय केते निस्तर भय विच निर्भो पाए। गुरु के इतने गुरु के अर्थन वह उपदेशक जो जीवन के सच का उपदेश करने वाले हैं पुरख जो जीवन के हनेरे दे चानना देने वाले हैं ऐसे गुरु का उपदेशक का तू अपने अंदर भय रख। सचा पातशाह कहने में मैं तेन कहना गुरु कै भय के निस्तरे भय विच निर्भो पाए इस डर रहा तेरे अंदरों तेन पता चलेगा वो मेरे को मालक तेन प्राप्त हो जाएगा। गुरु के डर कईयों का निस्तारा हो गया पार उतारा हो गया। सचा पातशाह फिर उस शेख में कहते हैं जिससे कोई सियासी ताकत तो धार्मिक ताकत है फिर दस तो बाद हो गए ये शेख कोई राज सिंघासन तो नहीं सी बैठे होंगे लेकिन राज सिंघासन तो बैठे हो जाते हाथ ठोके सन फतवे वो जारी करवाते सन। गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह उत्ते फतवा औरंगजेब के हुक्म नाले चलिया से छोटे साहबजादों उत्ते फतवा सूबा सरहंद के राही होया से फतवा दिता से काजिया ने धार्मिक मुखिया

0: तमाम किस्म के ऐसे धार्मिक मुक्ति भावे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो शेखा में सतगुरु कह सकते हैं तो उसका मतलब है सारियां दे वास्ते समान एक संदेश है, सांझी सदर जहान है, तो सारे जहान वास्ते है तो यकीनन तौर पर साडे वास्ते भी है। किधरे असी तो उस तरह के नहीं हो जा रहे, गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते हैं मन कठोर शब्द भेज तू शांत वस्ते मनाए, कठोर मन दे शेर फैसले सुनाने वाले शेर न्या ना करने वाले शेर वेख तो गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते हैं मन की कठोरता छद न्या करेगा वो आदमी कठोर दिल का नहीं होगा, फैसले पूछेगा वो कठोर हो जाएगा। तो मनुख का सुभा है फैसले पूछता है न्याय नहीं करता, जिसके हाथ की ताकत समर्था होती है वो न्याय नहीं करता वो फैसले करता है। महाराजा रणजीत सिंह इस लिहाज से कि गजब की सोच रखते सन, दो घटनावान का जिक्र आता है, बच्चों ने डेरी में पत्थर मारे तो चलते चलते एक पत्थर महाराजा साहब में लग गया, नाल दे सिंघां ने पकड़ के उन्होंने बच्चों का कुछ कुटापा पीता होना है, बच्चे बच्चे हैं उन्होंने चीख पुकार रोना सुन के महाराजा साहब ने कहा इत्थे लैके आओ। पूछो बचियो मैं क्यों बिगाड़िया थोड़ा कि मैंने पत्थर मारिया, तुसे पूछ लिया से हूं तो हंकारी आदमी पूछते ही नहीं, फैसले पहले पूछते उन्होंने क्योंकि उन्होंने सुभा हंकार के नाल इतना इतना कठोर है तो किसी पहले उन्होंने विचार पूछते ही नहीं। महाराजा साहब ने कहा बच्चे क्यों बिगाड़े तेरा पत्थर क्यों मारे है, बच्चे सिसक के कहन लगे कुछ तो खा नहीं थी मार तो खा ही नहीं थी, सिसक के कहन लगे असि तुहानू पत्थर नहीं मारिया, लगे तुहानू है पर मारिया नहीं, फिर मारिया किसने सी तो देरी में मार रहे सा क्यों देर खाने से, देरी में पत्थर मारे तो वो देर मिलेंगी है। हां महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा तो कह लगे मैं मनुख हो तो उसको भी नीमे पत्थर में हो गए, देरी में पत्थर मारे तो वो देर देंगी है तो मैनु पत्थर लगे मैं महाराजा को आया जाना तो इन्होंने सजा मिले नहीं, इन्होंने बच्चों कभी सजा नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने मैनु नहीं मारिया देरी ने मारिया सी। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह ने छाती नाल ला के उन्होंने बच्चों ने बड़े इनाम दे देते सन, कौन है देने वाला, बुद्धू माई थी एक लाहौर के बाजार से लंघ रहे सन महाराजा रणजीत सिंह, तवा लैके आई हाथ के कपड़े नाले रगड़न लगे, नाल दे सिंघां ने देखा धक्का मार के थले सुट देता, बिचारी दे दो दो दिखे सारे छिले गए रो पी, महाराजा साहब की नजर गई तो कह लगे उन्हें धक्का क्यों दिता है, नाल दे कहन लगे महाराजा साहब कोई पागल बुद्धि दिखती है देखो तुहाडे हत्थां नाल कपड़िया नाल तवा रगड़ के काला कर देता है। महाराजा रणजीत सिंह कह लगे इसको कुछ तो लेंदे धक्का दे दिता तुसी बिरद माता है ये तवा क्यों रगड़ गई थी, बस आखरी एक बुद्धू के वास्ते भी तुसी फैसला नहीं लिया, यूनानी मसला फैसला नहीं लिया, पांच दस आदमी इकट्ठे होकर फैसला नहीं लिया, महाराजा साहब तुहाडी इस गलो बड़ी आई है तुसी एक बुद्धू स्त्री के वास्ते भी न्याय किया उसने मौका दिता पुछ तो लो इसने तवा क्यों रगड़िया है, हंकारी आदमी किसी को पुछते हैं फैसले ठूसते ने, वो शेर सन वे जो कठोर मंदे हैं। कठोर आदमी कभी भी धार्मिक नहीं होगा, भावे धार्मिक ओढ़िया से बैठा होगा लेकिन वो धर्मी पुरुष नहीं होगा। वो जालम है, वो औरंगजेब के सुभादा शेखां के सुभादा है जो फैसले पूछता है। महाराजा साहब ने पूछा कुछ तो लेंगे, इसने क्यों सजा रख लिया है? आप चुकिया महाराजा रणजीत सिंह ने उस वृद्ध माता ने कहने लगे हाथ जोड़ के, माता मैं माफी चाहूंगा तेरे को, क्योंकि मेरे ही आदमियों ने तेन धक्का देता है, कि मेरे आदमियों ने मेरे करके तेन धक्का देता है। माता मैं इसका माफी मंगल वाला कसूरवार हाँ, पर बस माता तू सजा क्यों रख रहे हैं? दुर्ग माता रो के कहने लगी, क्योंकि गोदे जिते तो छिले गए थी, दुर्ग वंशी थी। कहने लगी महाराजा साहब मैंने कन्ना में एक खबर मिली सी, सुनया से साडे महाराजे ने गुरु पारस की छो लग गई, गुरु रामदास सतगुरु सचे पातशाह की सेवा करते करते गुरु पारस की छो लग गई, तो आम सत्संगा दे साधु संत को सुन भी रही पढ़ भी रही, जिसने गुरु पारस की छो लग जाए वो भी आप पारस वर्गा हो जाता है। तो ये भी सुनने च आया है पारस नाले लोहा लग जाए तो सोने दे बदल जाता है। मैं गरीबनी बुद्धि का कोई नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं तो कुछ भी नहीं। एक कया कया सुपराणा जिया लोहे का मैं तो छुआ को देखना चाह रही सी, मेरा लोहे का कया सोने दे बदल गया या नहीं, पर सोने दे बदलना पे एक पास मैं तो धक्के पै गए, बुद्धि वैसे हाँ गोडे जिते छिले गए, मैं तो सिर्फ यह देख आई सा महाराज जी ने गुरु पारस में छो लग के पारस हो मेरा लोहा तो तवा सोने में बदलो। महाराजा रणजीत सिंह दी ढिडा निकल आईया, पूरे बाजार में चुप्पी गई, रो के कहन लगे माता हम तो यकीन हो गया मैं इस ताने रणजीत ने अपने बारे के आ, इस ताने रणजीत ने गुरु पारस की छो नहीं लगी, नहीं तो तेरे लोहे का तवा सोने में बदल जाना सी। मैं माता तू तो जिस गुरु का नाम लिया ना तो ना पारसों का पारस है, तेरे लोहे का तवा गुरु पारस के नाम नाल लग्या है। उस वे हुक्म देता इस दुर्ग माता ने इसके लोहे के तवे के तोल के बराबर का सोना दे दो। फैसला नहीं पूछिया न्याय पीता है, कठोर चित फैसले ले ले गए। तो मैं लगता है जो साढ़े को ओदा आए तो रोग ना आए, फिर ओदे का मतलब ही की है? पोस्ट हो गए तो किसी को रोग ना हो गए, फिर मतलब ही की है? पोस्ट भी हंकार भी खुराक रोग है, तो रोग कहां बनता है जब किसी उसे फैसले हो उतना उतना कठोर हो जाता है, निर्दयी हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज सचा पातशाह सुखमनी साहब के करता पुरख एक बड़ी कीमती सूत्र के रूप में गल करते हैं, कहने सारी धार्मिक कर्म करता होया कोई आदमी मन की कठोरता नहीं गवाता, उसे तरह बरकरार रखता है। मैंने कोई दसे सतगुरु आप सवाल कर दे, मैंने कोई दसे वो हरि की दरगाह किस तरह पहुंच सकेगा? काल नहीं पहुंच सकेगा। सुखमनी साहब के पाठ करने वाले दो दो चार चार पंच पंच पाठों करने वाले आदमी कभी संपति से अपने मन में रोकणगे? दूजिया में कहेंगे लगे बी जो तेजे घर च विपता है ये है तुहाडा काम नहीं चलता, तुसीं सुखमनी साहब का पाठ करो, पाठ करना चाहिए बगैर गिनती के, पाठ करना चाहिए। लेकिन उस पाठ में समझो तो सही, पाठदी हिदायत की है, पाठदी शिक्षा की है, पाठदा संदेश की है, पाठदा उपदेश की है। उनको देखो गरीब नवाज सचा पाशा आप सवाल कर दो में अनत जतन कर आत्म नहीं द्रव अनेक यतन करके पूजा पाठ करके निकनेम करके शुद्ध कपड़े पाके शुद्ध भोजन करके शुद्धता के हंकार में जुड़ के सब कुछ करके अनेक यतना के बावजूद जो किसी का हिरदा नहीं द्रवता कठोरता खत्म नहीं होगी। तो सचा पाशा आप सवाल कर दो ने कहने में अमित जतन कर आत्म नहीं द्रव हर दरगाह कहो कैसे दव मैं दसो वो हरी की दरगाह किस तरह जा सकता है भाव कभी नहीं जा सकता। गरीब नवाज सचा पाशाह ही कह रहे हैं मन कठोर शब्द भेद तू शेख धार्मिक ताकत रखते शासी आदमियों के हथ ठोके बनिया हुआ शेख तो कोई भी हो सकता है। इस वचन के राही हर आदमी को अपने अंदर झाती मारनी चाहिए है। मेहरबान सतगुरु कहने में मन कठोर शब्द भेद तो इतने शब्द के अर्थ में उपदेश उपदेश के राही बड़े अखर न उख्यारी है कि वर्ब क्रिया है इसके अर्थ हैं यह जरा कठोर मन होया होया है नन्हे अक्षर थले भी अंकुर है कठोर रवे थले भी अंकुर है एक सिमिलर माइंड एक वचन है जिस कहने में जिस तेरा मन कठोर होया होया है इस कठोरता में शब्द दे राही भेद तू विन दे उपदेश ऐसा जैसा तेरे अंदर की कठोरता विनी जाए खत्म हो जाए तो लोगों के फैसले ना तू से न्याय करे या वो न्याय कर दिया तो फैसले दूसरे हैं मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए उदो तेरे मन में असल शांति होगी वरना तेरे मन में एक अपराध भाव बनया रहेगा। तू तो कितने कितने दलील पढ़ के अपने आप में बचाने की कोशिश करेगा रात तेन नींद ठीक नहीं आएगी दिने तेन तसली नहीं आ जाएगी भलौठे बेच जिएगा तेन शांति नहीं आ जाएगी। मन कठोर शब्द भेद तू शब्द के अर्थ में उपदेश यह उपदेश जो किसी के उत्ते फैसला नहीं ठूसना न्याय करना है तेरे हाथ की धार्मिक ताकत है शेख सुन अगले शेख भी सुन उन्होंने शकल सूरत उन्होंने कपड़े लबो लुआब उन्होंने बोली कोई होर हो जाएगी लेकिन सुभाष शेख वाला है सचा पाशाह कहने में मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए तेरे मन में असल शांति आ जाएगी। तो फिर एक गल समझ शांति विचकार कमावनी सा खसम पाए थाए जब तू शांति एक काम करेगा शेख कठोरता छड़ के तू हुक्म क्यों नहीं जारी करेगा तू किसी उत्ते फैसले नहीं पूछेगा न्याय करेगा तो यह जो भी काम करेगा ना शांति दे खत्म दरगाह दे उन्ना कमां नूं ते तैनूं प्रवान कर लवेगा। शांति विचकार कमावनी सा खत्म पाए थाए सचा पाशाह फरमान करदे ने नानक काम क्रोध किने ना पाए पुछो ज्ञानी जाए ज्ञानवान पुरखां कोलों तुसीं पुछ के वेख लो। सचा पाशाह गरीब नवाज कहंदे ने काम दे क्रोध दे किसे ने भी बख्शिश प्राप्त नहीं कीते कामना रखण वाला ते कामना दे विघन पान करके क्रोध नूं वधाण वाला साडा क्रोध कदों वधदा है जदों साडी कामना दे कोई विघन पाए। इतनी इतनी अजीब किस्म दीआं कामनावां हुंदीआं ने कि अपनी कामनावां नूं पूरियां करन वास्ते जिहड़ा विघन पाए उस उत्ते क्रोध जागदा है। गरीब नवाज सचा पातशाह कहने में नानक काम क्रोध तुम्हें न पायो। पुछो ज्ञानी जाए, तुसे ज्ञानवान पुरख को लो, तुसे ज्ञानी पुरख को जाके पुछ लो, वो भी तुम दस देगा। सचा पातशाह कहने में काम देख भी क्रोध देख भी किसे ने भी मालक की बख्शिश नहीं प्राप्त की थी, शांति प्राप्त नहीं की थी, तुम जाके पुछ लो। अगले श्लोक च गुरु अमरदास साहब पातशाह फुरमान कर देने फिर महला तीजा। मनमुख माया मोह है, नाम न लगो प्यार। जो मन के पिछे चलते ने तो मन बनया हुआ कठोरता दे, कठोरता इस वस्ते है क्योंकि उसके लिए धार्मिक ताकत है। इस वस्ते उस धार्मिक ताकत का इस्तेमाल शेष करता है क्योंकि उसमें जिन्हों के हाथ की सियासी ताकत है वो वरत रहे हैं। सचा पातशाह कहने में किसी तरीके नाल ही उसका नाल मिलिया हुआ है कि मनमुख है। मनमुख में माया का मोह है, उन्हें पता है जे मालक मैंने इतने ना बिठाता तो मेरी की औकात से। मैं तो पहले भी यही सन, जिस दिन मैंने हटा देता इस शेख पने को मैं फिर यही हो जाऊंगा। जितनी देर इसने बिठाया है इसकी भी मुराद पूरी करा तो अपना भी खजाना भरा, यही होंगे ना। अगले भी मुराद पूरी करा तो अपना खजाना भरा, तो मनमुखताई नाले माया नाले मोह हो गया। इंद्र ताजा है ना, इन सब कुछ दिख रहे हैं ना, इतिहास पढ़ो तो सब कुछ दिख रहे ना। इतिहास के आज भी यही हो रहा है ना, इकले आदमी ने सिरे से कसूर पाके काले झंडे दिखा देने, वो भी दरबार साहब जैसी जगह पे। की कसूर है? कोई मत्था टेकन जाए की कसूर है? इतने करप्शन जड़ा दे पई हुई है, जड़ा दे किसी भी जगह पर चले जाओ तो सारे करप्शन का जिम्मेदार एक आदमी मन लेना, तो भी दरबार साहब के चेलों में काले झंडे दिखाने कि किसी के सियासी मकसद में पूरा करने के वास्ते और तरीके नहीं। ये माया का मोह तो प्यार नहीं कि मनमुखता ही नहीं। कैसे गजब की गल सतगुरु जी ने की है, फुरमान कर दे ने उस नाम नाले प्यार नहीं। मनमुख माया मोह है, नाम न लगे प्यार। कूड़ दमागे कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। आहार कूड़ का आहार रोटी की हो, ताल कूड़ ही उसकी जिंदगी का आसरा है, उस नाले जिंदा है, कूड़ में कमांदा है, कूड़ में इकट्ठा करता है। वो मनमुख है, वो माया नाले प्यार करने वाला है, वो आदमी धर्मी नहीं है। क्योंकि शेख के प्रकरण देखिए दूजा श्लोक है, गरीब नवाज सचा पातशाह कहने में दिख माया तन संच मर है। कि फर्क पड़ेगा, चार गिट ज्यादा जमीन हो जाएगी कि फर्क पड़ेगा, बैंक बैलेंस में थोड़े या पैसे ज्यादा हो जाएंगे कि फर्क पड़ेगा, तिजोरी में कुछ लाख दो करोड़ रुपए इतने हो जाएंगे। पर तेनू नहीं पता शेख जिन्हों के हाथ की कठपुतली से बन के कठोर होके लोगों के उत्ते फैसले पूछ रहा है, तेनू नहीं पता तो सारा कुछ कितना इकट्ठा कर ले। गरीब नवाज सचा पातशाह कहने में दिख माया तन संच मर है, मर जाएगा, मौत आ जाएगी। शरीर भी तो उससे पहले जमीर भी मर चुकी है तेरी, देख देख शेखा देख, तेरे अंदर जमीर मर चुकी है, मर गया है। आत्मक मौत शरीर मौत आने वाली है, अंत हो सब चार और फिर सब मिट्टी हो जाएगा। देख फिर कोई पैसा पहले भी बड़ा है लोगों को, देख अब तेरे को चार कोटियां आ गई। शेख तो किसी सियासी आदमी का भी कठपुतली बन के कठोर होकर फैसले पूछ रहा है, देख तो जिसमें तू इकट्ठा कर रहा है ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਖਾਰ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਬਾਦ ਸੋਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ੇਖ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਹ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, 51 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਟਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੂਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀ ਦਾਰੇ ਦੋਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਲਮ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਠੂਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰੇ ਦੋਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨ, ਸੰਜਮੀ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਪਨ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਲੋਭ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੁੱਚ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਕਮਾਇਆ ਸੋ ਖਾਏ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਐਸਾ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਸੁਆਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਖੰਡ ਵਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਬਣਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੁੰਦ ਆਪ ਹੈ ਸਾਗਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਧਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਲਹਾਏ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਉਸਨੂੰ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਭਉਜਲ ਆਪ ਹੈ ਬੈਠਾ ਆਪੇ ਖੇਜਤ ਆਪ ਧਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਬੋਹਤ ਵੀ ਆਪ, ਬੋਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਖੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਤੁਝੇ ਸਰੇ। मालक जी फरमान कर दे परमेश्वर जी गुरु रामदास सतगुरु जी आप ही तुम एक कर्म करान वाले हो सम्मुख करवाते हो मनमुखताई को छुटवा देंगे हो इस संसार के रत्नों में उसने प्राप्त करवा देंगे हो अगर न दूजा तुझ है सर है तेरे बिना कोई होर दूजा सरदा नहीं पाओ कोई होर है नहीं सिका पातशाह गरीब नवाज ने इस पौड़ी दे नौवीं पौड़ी दे दो श्लोकों में ऐसे विचार बख्शिश की जो दास की समझ आई है कल इस दौर की अखीरली विचार फिर आप जी की सेवा दे रख के दास ने छुट्टी लेनी है भुला चुका लिखेवा असी संबखते सारे ही फतह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: ਕੇਰਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

कहने लगे हे वैज्ञानिक तू तारे देख रहे हैं ते मैं भी तारे देख रहे हैं सिर्फ फर्क इन्ना तू तारियां की खोज विच लगा है मैं इस गल की खोज विच लगा भी ये तारे बनाए किन्ने ने रस्ता तेरा भी तारियां दे रहा है मेरा भी तारे दे रहा है जे तारे ना बने होंगे तू खोज की करना जे तारे ना बने होंगे मैनू क्यों सोचना पैंदा तारे बनाने वाला कौन है रस्ता तेरा मेरा एक जे मैं भी तारे ना देखा तारियां की पछाण ना करा तो मैं क्यों सोचा बनाने वाला कौन है

0: जा को लैणो महाराज री गांठड़ियो, जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक